अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगीधर दशमेश पिता दे चरणां च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नूं रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नूं आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है ते सतगुरु गरीब नूं आज सचे पातशाह

सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके ते जेड़ा सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउन वाला गुरसिख नहीं जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा प्रात काल सत संग तो बगैर व्यर्थ कर दिंदा गरीब नवाज कहंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज।

कहाँ वे हर जस सुनते बात लवे। गोबिंद सिंह वह जमपुर जावे ते गुरसिख अमृत वेले उठिया। अमृत वेले उठ के सतगुरु जी दी हजूरी अंदर पहुंचया ते गुरु की संगत अंदर बह गया। गुरु की संगत विच बैठिया होया सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज दे पावन बचन सुनदा नहीं बल्कि नालदियां नूं भी नहीं सुनन दिंदा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ऐसे गुरसिख प्रथियाए लिखदे ने भाई हर जस सुनते बात चलावै। हरि परमात्मा दी बाणी सुनदिया हरि परमात्मा दी कथा हो रही होवे हरि रब परमात्मा दी गुरबाणी दा कीर्तन हो रहा होवे ते हर जस सुनदिया आपो विच गल्लां करदे रहना। गल्लां बातां करन वाले गुरसिख नूं महाराज कहंदे हन उसने जन्म व्यर्थ गवाया सतसंग विच बह के दूजे दा भी समा बर्बाद कीता। ऐसे गुरसिख नूं जमां दी मार पैंदी है सीधा जमपुर जांदा है। हर जस सुनते बात चलावे हर जस सुनते बात चलावे गोबिंद सिंह।

गुरु का दिता होया निशान केसा दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसा दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इसनू उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नू फिर सजाउणा टोपी जी सिर दे उपर धर लैनी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिदी ओ मुख पवित्र होना चाहिदा भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उसनू मां भैन दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सचे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवे संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करे क्रोध, कन्या मूल ना देवे सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नू मां भैन ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सचे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको

अकाल पुरख महाराज दे दिते होए मंत्र तो बगैर दूजा मंत्र जपन वाला गरीब नवाज कहंदे मेरा सिख नहीं। आई नंद लाल ए मर्यादा लिखी जाओ नाल नाल जिहड़े मैं वचन कह रहा ते इना दे अंदर कोई तब्दीली ना आवे। जो मेरे मुंह चो निकल रहे ने हूब हू उसे तरह लिखे जान बल्कि प्रोड़ता करके लिखे जान ते वादू चंगी गल है। क्योंकि सिख ए ना कहे भी गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे निकले हुए मुंह चो वाग शायद समय दे गुरसिखा ने फर्क

जपजी साहब ते जाप साहब तो बगैर जेड़ा गुरसिख खाना खांदा ना खुराक खांदा जेड़ा गुरसिख भोजन छकदा जल पान छकदा गरीब नवारी कहंदे ओ भोजन नहीं ओ खुराक नहीं ओ विष्टा दा किरम होके ते ओ विष्टा दे अंदर मुंह मार रहा है बिना जपजी साहब ते जप साहब तो बगैर बिन जप जाप जपे बिना जो जेवै प्रसाद सो बिस्टा का किरम होए जन्म गवायो वाद व्यर्थ जन्म गवा दिता इथो सिद्ध है गुरु के सिखो अमृत वेले हो उठ के जपजी साहब दा पाठ ते जाप साहब

रोजाना दा उचारण वाहिगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहिगुरु वाहिगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहिगुरु करे, घर विच बैठा वाहिगुरु करे, रसना दे उपर वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु दा टिका होवे, ते वाहिगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहिगुरु हिरदे च वसे भई वाहिगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछे। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है, गरीब नू आज सचे पातशाह ने आउन वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूर ने पा दिते गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा बल्कि

जुआ असत झूठ बोलना चोरी करनी मदरा शराब पीनी नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा पर नारी दा सुपना भी इस दी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने घरां दे अंदर बह के ताशां खेडनियां कार खेडने गुरु के सिख नूं मनाही है पर नारी इहदा सेवन ना करना जुआ ना खेडना असत झूठ ना बोलना चोरी ना करनी मदरा शराब नशे आदिक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे ए सिंह तज जावे ओ जवान गिणिया जाए।

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा, गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे, पवित्र होवे, ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन, रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबू ना लहै। कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत, पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाइया दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ओनू कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो ओनू छेक दिता जावे जिहड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख, इसने ये रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज को लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दिते हुए इस रहतनामे दे। गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी के वतना मुताबक अपने जीवन

देना हारदा जिसदा साहेब डांडा उसनू मार न सके साहेब की सेव करे आपे बख्शे दे दिसते ऊपर नाई आन डरे डर किसका आए न जाए ना दुखता ना मेरा ते

खिलौना का मतलब है कि शस्त्रां का खिलाड़ी, शस्त्रां का धनी। अस खिलौना मेरा तो नाम गोबिंद सिंह। अस खिलौना।

तो दान न लागत नी को, आन तो दान न लागत नी को, आज भले इनी को दियो, आज भले इनी को दियो, जग में जस और दियो सभी को, जग में जस और दियो।

0: इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सुधार करे, आज आग टे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन काम भरे,
1: इन्हीं की कृपा फुन काम भरे,
0: इन्हीं के प्रसाद सुधार करे, इन्हीं के प्रसाद सुधार करे, इन्हीं की कृपा सब शत्रु में।

जे तुमरे ध्यान को। गुरु गोबिंद सिंह कहते जेड़े परवतगार का नाम नित प्रति जपते ने उन्होंने प्राप्ति होंगे। साहब फरमाते जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत, जे जे तुमरे ध्यान को नित उठ ध्याए है संत, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान, अंत लहेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवान। आप मुक्त मुक्त करे संसार, आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक जिस जन को सदा नमस्कार, नानक जिस जन को सदा नमस्कार। नित जपिए

उनके शरीर के दर्शन करते हैं, उनके चरणों की छोह प्राप्त होती है। कितने बड़े भाग होते हैं हमारे। लेकिन गुरु नानक शरीर में नहीं है तो कुछ आनंद कम आता है। गुरु अर्जन देव जी इस भेद को खोलते हैं, भाई गुरु नानक की वाणी तुम प्यार से पढ़ोगे, श्रद्धा से वाणी के दर्शन करोगे तो उसमें से ही गुरु नानक के दीदार है। ऐसा लगेगा जैसे प्रत्यक्ष गुरु नानक के वचन सुन के आए।

ख्याल का है, गुरु सूरज के माफिक है। ये बात अलग है, हम लोग खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लेते हैं। ऐ सूरज तुम्हारी रोशनी नहीं चाहिए, फिर कहें सूरज हमारे घर में नहीं आया, भाई भूल तेरी। सूरज तो हाथ दे रहा है, दस्तक दे रहा है, तेरे दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन तुमने दरवाजे बंद कर रखे हैं। गुरु नानक तो तेरे दरवाजे के बाहर खड़ा है, पर तुमने अपने दिल के दरवाजे बंद कर दरवाजे खोल।

आख्या जे तू अकल लतीफ ता काले लिखना लेख कोई पाप ना कर कोई ऐसा उपद्र ना कर तू मनुख तू देवता बनन लई इथे आए है ऐसा ना होवे मनुख तू पशु बन के जावे जिस वाहिगुरु ने तैनू अमोलक श्वास बख्शे चंगे गुण धारण कर जे औगुण वेखने हन ता अपने अंदर जाती पा ते जे सिफत करनी है उस्तत करनी है ता अकाल पुरख वाहिगुरु दी कर आप नड़े गिरीवान में आख्या अपनी बुकल विच नीवा सिर पा के वेख विचार कर जो जिस माया दे लोभ ने तैनू पाप कर्म करन लई प्रेरणा दिती है ओ माया तेरी कितना कुछ सहायता करेगी ए रिश्ता आदि पाप कर्म जो फल तू प्राप्त कर रहे हैं ए माया तेनू सुख नहीं देवेगी ए माया नरक बन जाएगी आप नड़े गिरीवान में जो कुछ तू कर रहे हैं जो कुछ हृदय रूप पट्टी ते लिख रहे हैं उनु वाच उनु वेख तू की कर रहे हैं इसलिए बाबा फरीद जी कहते

वृद्ध अवस्था एक मनुख की बिरध अवस्था है। ते बाबा फरीद जी दे पास आके बेनती की थी, फकीर साईं

मरन वर ले जासी परनाए। ओ भाई एक दिन ए पांच भूतक शरीर तैनू त्यागना ही पवेगा, ओथे तेरियां सियाणपां कम नहीं आउणी। एक गुरु का सिख जो सतगुर दे पाने विच अपना जीवन बतीत करदा सी, अज एक प्रेमी आया विचार वटांदरा होया ते गुरु के सिख ने आख्या भाई गुरु नानक।

जी, 12 साल बंदगी करके वापस आ रहे हैं शहर वाल, ता एक खरबूजिया दे खेत को लंघे, भुख लगी सी, मन विच ख्याल आया कोई खरबूजा मिल जाए तो भुख मिटा लिए। इसका राख एक बच्चा बैठा सी, उन्हों क्या बेटा भुख लगी है एक खरबूजा मैनू दे दे। ता ए बच्चा कहन लगा, फकीर साई तेरे वर्गे इथे कई रोज लंघदे हन, जे सारिआं नूं खरबूजे इसे तरह तोड़ तोड़ देंदे गए तां फिर सानू की प्राप्त होवेगा। जिन्हां ने मेहनतां कीतियां हन, जमीन नूं वतर विच लियांदा, बीज बोया ते फिर खेती होई, ते तू मंग रहा खरबूजा नहीं मिलिया। फरीद जी तुरी गए ते मन विच ख्याल कीता, भई मना तू की लिया फकीरी कोलो, अज तैनू मंगिया एक खरबूजा भी नहीं मिलिया, ते जे तू ग्रस्ती होंदो ता तैनू इस तरह मंगना ना पैंदा। जे तू ग्रस्ती होंदो ता कुछ करके ते अपनी किरत विचों होरना नू भी छका सकदो, पर हुण की करा, हुण ए जेड़ी फकीरी दी पंड सिर ते रखी है, हुण इस नू लहा भी नहीं सकदा, क्योंकि फकीरी नू छड के हुण ग्रस्ती बना ता सारे ही शर्मिंदा करनगे। ऐसा मन विच सोच ही रहे सन, शरीर थक चुका सी, आप बैठ गए ते मन विच यही ख्याल चलदे रहे, भई जे मैं ग्रस्ती होंदा तां अज इस तरह मैनू एक खरबूजे वास्ते तरसना ना पैंदा। सात संगत बोलो श्री वाहिगुरु। तां इस खेत दा मालक इधरों जदों अपने खेत विच पहुंचिया, छामा दा टाइम है, खरबूजे तोड़ के टोकरियां विच रख के मंडी ले जावां, ते जां खेत विच पहुंचिया तो जितने खरबूजे लगे सन सब मानुख दी श्रियां बन गईयां, ते सारिआं ने आख्या, हत्यारिया सानू हथ ना ला, सानू ना हथ ला। ए मालक बड़ा हैरान होया, ये की कारण हो गया। अपने नौकर नूं पुछया, इत्थे कोई आया सी? आख्या कोई फकीर साई आया सी, उसने खरबूजा मंगया, मैं नहीं दिता उसनूं। तां मालक भजदा होया जिथे फरीद जी बैठे सन उथे जा पहुंचया, चरणा ते डिग पिया, महाराज मैनू खिमा बख्शो, मेरे ते मेर करो, मैं बाल बच्चेदार हां, उधार लैके ये खरबूजे उगाए सन, ते हुण सिरियां बनिया हन, मैं जदों तोड़न लई जाना तो मैनू कहंदे हन हत्यारिया सानू हथ ना लाई। फरीद जी कहन लगे, भाई प्यारिया असी ते कोई ऐसा वचन नहीं कीता, असी ते कोई शराप नहीं दिता, फिर भी महाराज आप खिमा करो, कृपा करो, मेहर करो, मैनू बख्श लो, मैनू एवी कृपा करके दसो, भाई ए खरबूजे मैनू हत्यारा क्यों कहिंदे हन? तां बाबा फरीद जी कहन लगे, जदों तू खरबूजे तोड़ेगा ना, एक खरबूजा तैनू इस गल दा जवाब देवेगा। उच्चारण करो श्री वाहिगुरु। जा खरबूजे तोड़ ले, जा ए मालक खरबूजे तोड़न लगा, होर ते सारे सिरियां तो खरबूजे बन गए, पर एक कैम रहा, एक विचों आवाज आई, हत्यारिया
कितने वेरी तू खरबूजा बनियो ते असी तेनू कटिया, हुण असी बने हां तू सानू कटिया। पर अज कैसा अवसर सी एक रब दा प्यारा एक रब दा फकीर, जे किते सानू अपनी रसना दे नाल ला लैंदा, जे तू एक खरबूजा उस रब दे प्यारे नू दे देंदो तां साडा जन्म मरन कटिया जांदा। इधर फरीद जी मन विच सोचदे हन, मना जे तू भी ग्रस्ती होंदो ते तेरे कोलों कोई ऐसी फुल हो जांदी तां किवें ए साडे पैरां ते पै के माफियां मंग के खिमा मंग के गया है। ते जे तू भी कोई गलती कर बैठ दो ग्रस्त विच तो तेनू भी इसे तरह पैरां ते डिग के माफी मंगनी पैंदी। इस लई फकीरी फकीरी चंगी है, पर फकीरी प्राप्त करके मनुच्छा जन्म प्राप्त करके जे तू काले लेख ना लिखे तां तेरा संसार ते आउणा सफल है।

जिस पुरुष ने जवानी विच कुछ नहीं किया, क्योंकि फरीद जी कहते हैं भाई बचपन खेडां विच बीत गया तो जवानी सिमरन विच बतीत कर लैंदा, क्योंकि जवानी विच देह अरोगता हुंदी है ते फिर बिरध अवस्था विच जदों मनुख पैर रखदा है तां फिर इस देही नूं रोग लग जांदे हन ते रोग काल दी निशानी है। इसलिए फरीद जी कहंदे न काली जिनी ना रावया, जिन्हां ने जवानी विच नहीं जपिया उन्हां नूं भाई बिरध अवस्था विच भी चेता नहीं आउंदा, भाव ओह नहीं जप सकदे।

तू मेरे काम लग जा मैं तेरे काम लग जाना मैनू तू अपना काम दे दे ते मेरा काम तू ले संसार जैसा चल जाता एक दूसरे दे काम आना जिस काम की जिदी जिनी समर्था हो बड़े पुराने समयां तो बंदा काम दा लेन देन करता रहे जेड़ा काम मैं नहीं कर सकता जेड़ा कर सकता है उन्हूं जाके बेनती करा तू ये कर दे इहदे बदले च तू जेड़ा काम मैं कर सकना वह मैनू दस एक दूजे दे काम आ सकी संसार किसी ऐसा वरते है पर कई बार ऐसा भी होया कि जिदे ते भरोसा किया है कि मेरा काम कर सकेगा ओदी समर्था थोड़ी होने करके कई बार निराशा

मैनू सिर्फ अपनी भगती च अपनी अरदास जोड़ दो। मैं तुहाडी अरदास जुड़िया हुआ, अरदास अरदाश्त बेनती कर रहा हुआ, अर्ज कर रहा हुआ, मैं केवल अरदास जुड़िया हुआ। एक ते जुड़ जाए ना बंदा, साहिबा ने विश्वास दृढ़ कराया, बिरथी कदे ना हो गई जन की अरदास। खुदा मंजूर करता है दुआ जब दिल से होती है, ये वखरी गल है। मुश्किल तो ये है कि ये बड़ी मुश्किल से होती है, जुड़ना ही औखा है, अरदास जुड़ जाना ही औखा है। नहीं जुड़े रहता तो ये वास्ते भी अरदास करिए, बादशाह कर कृपा अपनी भगती लाए। तू मैनू अपनी अरदास जोड़ दे, अपनी भगती नाल मेरी लिए एकाग्र करन दी समर्था मैनू बख्श। फिर मैं अरदास लगा होवांगा, हाथ बन के मस्तक निवा के मैं तेरे काम लगा होवांगा, भगती च लगा होवांगा। प्रभु दा होर कोई काम साथों थोड़िया नहीं गया, वाहिगुरु दा कोई काम साडे गोचरा नहीं। प्रभु केवल प्यार चाहुंदा है साडे कोल, सतगुरु केवल साडे कोलों प्यार चाहुंदा है। ते जिस दिन सिख नूं प्यार करना आ जाए, अरदास करनी आ जावे ना, फिर की हुंदा है? जो जन तुमरी भगत करन ते तिनके काज सवारता। एक तां हुंदा ना काम हो जाना, काम कर लेना, काम नबेड़ लेना। ते आम तौर ते बंदा कोई काम कर लवे ना, पहला तां करन तों पहला ही थड़कदा हुंदा, घबराया हुंदा, डगमगाउंदा है। ते जे किते काम हो जाए, हंभ के बह जांदा, पसीने पूंजदा है, सजना मित्रां नूं कहिंदा है शुक्र करना काम निबड़ गया। बंदा केवल नबेड़ सकदा है, लेकिन सतगुरु जिसले करदा है तो नबेड़दा नहीं, सतगुरु कार्ज सवारदा। वड्डी वडियाई अचरज शोभा, उस कार्ज विच शोभा हुंदी, मान हुंदा, सत्कार हुंदा, उस कार्ज दी वड्डी वडियाई हुंदी। कार्ज आया रास्ते, नानक कहो गुर पूरा भेटियो, सगले दुख बिनासे। जदों सतगुरु कार्ज करन आ जावे, उसले कार्जां च शोभा हुंदी, ते अरदास करने वाले का मुख उजला हुंदा। ये गल वखरी है कि अरदास करने वाला बंदा कार्य की संपूर्णता तो बाद यह नहीं कहिंदा मैं काम नबेड़ लिया, बल्कि वह

अपने सुख से ही जग पाते हो। हा हा बाद विच जिहड़ा कल पहला पढ़िया जा रहा है, आओ एक शब्द।

0: झूठी हो सकती है?
1: अरे थोड़ा झूठी हो सकती, अरे थोड़ा सुच्चा है, हाँ सुच्चा है, ना बंदा।